रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा

रहे तो लब में सवार सब हैं पयादा मिसले गुबार में हूँ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शेआर में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब तो मशगूल कार में हूँ। ओ माय बिलव्ड अल्लाह, फार टू लॉन्ग हैव आई रिमेन्ड अ यूसलेस पर्सन, यूसलेस इन फ्यूटाइल एक्टिविटीज, फ्यूटाइल टॉक, फ्यूटाइल आमाल। आई वेस्टेड माई लाइफ एंड माई टाइम, डेज एंड डेज, वीक्स एंड वीक्स, मंथ्स एंड मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स वेंट इन इंडिफरेंस, नेग्लिजेंस। बट आई एम टर्निंग टूवर्ड्स यू माई बिलव्ड अल्लाह, for you are the only one that is prepared to accept me in whatever condition I am. I come to you with all my sins, my evil actions and deeds, my pitch black heart. My Allah, I come to you. Your mercy has got no limit. One drop from your ocean of forgiveness is to sufficient to wash away the sins of mankind. So therefore, my beloved Allah, forgive my sins and now make me a useful person. So we make dua like that.

बख्श दे मेरे सारे गुनाह। ओ माय अल्लाह, देयर इज नो वन मोर सिनफुल देन माय सेल्फ इन योर एंटायर क्रिएशन, बट यू टू आर सो फार, सो फॉरगिविंग, सो फॉरगिविंग, सो फॉरगिविंग। फॉरगिव ऑल माय सिंस माय बिलवड अल्लाह। ये बेग अल्लाह तबारक व तआला।

हिजरत किया, पा गया वो बहारे वतन। हे जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, हे जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तर के वतन। हे जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तर के वतन। लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दशतो दमन। सो दैट इज व्हाट जिक्र इज। मे अल्लाह तबारक व तआला गिव अस द हकीकत ऑफ जिक्र।

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत तुझ से हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, मुझको फ़कत तुझ से हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं। हरदम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं।

कर चाहता हूँ मैं तेरी पनाह, मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदार ना मसीहा, तू भी मगर गफ्फार है या रब।

बेया तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। ए रसूले खुदा सरवरे अम्बिया, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। तेरे अस्हाब सबसे हैं आला हुए, तेरे

सबसे जुदा तू है सबसे जुदा, ऐ रसूले खुदा सरवरे अंबिया, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा।

पद किरदारो नाम सिया तू भी मगर गफ्फार है या रब बख्श दे मेरे सारे गुना तू भी मगर गफ्फार है या रब बख्श दे मेरे सारे गुना तू भी मगर गफ्फार है या रब बख्श दे मेरे सारे गुना। नफ्स और शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तमाम, ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूं मैं तेरी पना। नफ्स एंड शैतान हैव गैंगड अप टुगेदर टू डिस्ट्रॉय मी, दे हैव डिस्ट्रॉयड मी स्पिरिचुअली, बट ओ अल्लाह आई सीक योर असिस्टेंस योर हेल्प। In your creation, there is no one worse than myself. I am very, very sinful, extremely sinful. But oh Allah, just as I am extremely sinful, you are also extremely forgiving. Forgive my sins, forgive my sins.

अंबिया, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। ए रसूले खुदा, सरवरे अंबिया, तू है सब

बेया तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। ए रसूले खुदा सरवरे अम्बिया, तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। तेरे अस्हाब सबसे हैं आला हुए, तेरे